0: गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजी नगर आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे इन द शो.
1: संडे की सुबह का मजा कुछ खास है, चाय की चुस्की और रेडियो के साथ है आरजे अदनान. एमजीएम पे सुनो धमाल करें ये संडे स्पेशल
2: ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम. साथ है तो बात है.
0: आणि आज आहे संडे. यार संडे मतलब कितना सुकून भरा फील होता है ना. संडे रविवार इसके लफ्ज के अंदर एकदम सुकून भरा है. सो आज ये सुकून भरा दिन आप बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय करने वाले हो. आई होप कि यही मैं चाहूँगा कि आप एंजॉय कीजिएगा, टेंशन से मुक्त हो जाइएगा. क्योंकि एक तो दिन होता है जो आप अपने मर्जी से जीते हो, वरना हर दिन तो इसका उसका काम करो, बॉस के ताने सुनो, एम्प्लॉय का पॉलिटिक्स झेलो. इन सभी से दूर जाने के बाद एक दिन मिलता है या किसी को दो दिन मिलते हैं वीकेंड के एंजॉय करने के लिए. तो इतना ही कहूंगा कि ये जो वक्त है ना, फैमिली के साथ गुजारिएगा, अपने खास दोस्तों के साथ गुजारिएगा. क्योंकि ये जो हफ्ते भर का पूरा इंतजार होता है ना, वो आ जाता है इस वीकेंड के ऊपर हमें सुकून देने के लिए. सो इस वीकेंड के नाम ना तो एक मैंने खत लिखा है डियर वीकेंड इस नाम से, और बहुत बेहतरीन खत है ऐसा मुझे लगता है. वो भी मैं आपको सुनाऊंगा लेकिन कुछ ही देर के बाद. तब तक के लिए आप मुझे बताइएगा डीएम करके कि आज आपके संडे वाले क्या कुछ प्लान्स है और वो प्लान आप पूरा करने वाले हो क्या. फिलहाल अब सर बारिश का मौसम है तो एक प्लान बहुतों का होने ही वाला है. वो क्या है मुझे पता है भाई, मुझे पता है सब कुछ प्लान्स, वो भी मैं बताऊंगा आपको लेकिन कुछ ही देर के बाद. धीरे धीरे अभी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, बट कुछ ही देर के बाद लौट कर आता हूं मैं आपके इस शो में, संडे वाले स्पेशल शो में. और आज के शो में बहुत सारी बातें होगी, मुलाकातें होगी, और 90s वाला ये शो है तो 90s के ऊपर भी बातें तो होनी ही चाहिए ना, लाजमी है. सो बने रहिए मेरे यानी कि आरजे अदनान के साथ इन द शो.
1: संडे की सुबह का मजा कुछ खास है, चाय की चुस्की और रेडियो के साथ है आरजे अदनान. एमजीएम पे सुनो धमाल करें ये संडे स्पेशल
2: ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम. साथ है तो बात है.

0: संडे संडे संडे फंडे फंडे फंडे, त्यासाठीच मी तुमच्यासोबत आलोय ना. आरजे अदनान तुमच्यासोबत आहे ऑन एमजीएम 90.8 एफएम. आणि संडे मतलब कैसा, बहुत कुछ करने के प्लान्स होते लेकिन कभी पूरे हो ही नहीं पाते. अगर संडे सुन पाता तो मैं उसे ये कहता, डियर संडे, तेरा इंतजार पूरे हफ्ते होता है. नींद पूरी करने का टारगेट जो होता है, जो कभी पूरा हो ही नहीं पाता. सुबह की धूप भी थोड़ी नरमी लेकर आती है और चाय, चाय तो जैसे आज दिल के और करीब आती है. पता नहीं क्यों यार, आज टाइम थोड़ा फास्ट चलता है, मानो सुकून का टारगेट इसे भी पूरा करना हो. संडे मतलब सुकून, एक ऐसा सुकून जो कि छोटी छुट्टी लेकर आता है और थोड़ा ज्यादा फील होता है. लेकिन ये सुकून भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता. शाम ढलते ही नोटिफिकेशन वापस आने लगती है, ईमेल याद दिलाने लगते हैं कि कल ऑफिस भी है, और दिमाग तो फिर से मंडे की टेंशन से भर जाता है. कभी कभी लगता है संडे कोई दिन नहीं है, बस एक पल है, एक ऐसा पल जो आया मुस्कुराया और फिर वही कैट रेस, वही रूटीन लाइफ, और हम फिर से अगले संडे का इंतजार करते हुए. डियर संडे, अगर तू कह पाता तो ये कहता मैं तुझे. खैर, ये तो मेरे दिल के जज्बात थे जो मैं एक संडे को कहना चाहने वाला था, बट क्या करे, संडे तो सुन ही नहीं पाता. खैर, आप तक पहुंचे यही सही बात है. स्टे ट्यून विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम.
1: ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम. साथ है.

0: आपका स्वागत है बंदे का नाम अदनान। और क्या कुछ आपके संडे के प्लान्स है? बहुत सारे प्लान्स हो गए। और फिल्म देखने का अगर आपके पास प्लान हो तो फिलहाल इस वीक ना तीन फिल्में जो कि नई रिलीज हुई है। पहली है भारत भाग्य विधाता, 26/11 हमले के ऊपर ये फिल्म है। इसमें नर्स ने किस तरीके से अपना किरदार निभाया था उसकी कहानी है। कंगना रनौत इसमें एज ए लीड एक्ट्रेस है। इसी के साथ मैं वापस आऊंगा। खूबसूरत और एक फ्लो में चलने वाली, और इस कहानी को देखने के बाद लगता है यार ये कहानी बहुत बढ़िया है, नहीं बहुत ही खूबसूरत कहानी है, ऐसा आपके मुंह से निकलेगा इसके रिव्यू में। तो ये एक फिल्म है, मैं वापस आऊंगा, ये भी आप देख सकते हो। एंड गवर्नर नाम की एक फिल्म आई है, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है देखने का। 8.7 की इसको रेटिंग मिली है। एंड मराठी मध्ये सध्या थिएटर मध्ये आहे देऊळबंद 2, तुंबाडची मंजुळा, द महाराष्ट्र फाइल्स, इतके तुमच्याकडे ऑप्शन्स आहेत। अगर आपको हॉरर फिल्म देखनी है तो बैक रूम्स एंड हॉन्टेड 3D, ये एक फिल्म रिलीज हुई है, ये भी आप देख सकते हो। सो इतने सारे आपके पास ऑप्शंस है, कौन सी आप देख रहे हो जरा बताइए। डीएम कीजिएगा इंस्टा पर RG अदनान इस पेज पर। एंड संडे फंडे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM. साथ है तो बात।

0: आपने डायलॉग तो सुना होगा फिल्मों में कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। भाई खून पीने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खून डोनेट करने की बहुत जरूरत है। आरजे अदनान आपके साथ और आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो यार खून देना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। सो ये तो मैं कितने भी बार कहूंगा लेकिन आपको विश्वास होगा ही नहीं। तो अभी अपने साथ है ऋषभ करवा भाई ने ना तो अभी तक 32 बार ब्लड डोनेट किया है। तो आइए उसी से जानते हैं कि उसके कैसे एक्सपीरियंस थे।
1: मैंने अभी तक 32 टाइम्स मतलब 32 बार मैंने ब्लड डोनेशन किया है।
0: ओ क्या बात है। और कितने सालों से करते हो?
1: जी गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से आप 18 प्लस के आगे कर सकते हैं, तो मैंने हिसाब से मेरे एज 18 से मैंने स्टार्ट किया है। और गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से आप साल में 4 बार मतलब 3 महीने के गैप से कर सकते हो। तो मैंने अभी तक 8 साल में मैंने हर साल 4 बार के हिसाब से 32 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है।
0: 32 टाइम्स, वाह क्या बात है। और ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ आप में ऐसी क्या बोलते हैं थोड़ा वीकनेस वगैरह कुछ आया है क्या? मतलब बहुत लोगों का ऐसा लगता है कि यार मैं ब्लड डोनेट करूंगा तो मैं वीक हो जाऊंगा, बट आपने इतने टाइम किया, इतनी बार किया, तो आपकी क्या एक्सपीरियंस थे?
1: नहीं, जो फर्स्ट टाइम रहता है वो सबको फोबिया रहता है कि अगर आपको ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको वीकनेस आ जाएगा या फिर आप बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ है नहीं है, सब अपने पॉजिटिविटी पे है, अपने माइंडसेट के ऊपर है। तो जो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था वो मेरे माइंड में था कि आप ये जो डर है वो रहेगा, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम किया तो थोड़ा लगा लेकिन बाद में कुछ भी नहीं। एवरी टाइम मुझे पॉजिटिव फीलिंग ही आई है उसके बाद।
0: सो भाई आज ब्लड डोनर डे है तो इसके सिलसिले में आप क्या मैसेज देना चाहोगे?
1: और मेरी सभी युवा भाई बहनों से गुजारिश है कि आप सभी रक्तदान जैसे महान कार्य में अमूल्य योगदान दें और अन्य लोगों को ही प्रोत्साहित करें। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का।
0: वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो देखिए ऋषभ ने ना तो 32 बार अभी तक ब्लड डोनेट किया है और हमेशा करते रहेगी, आगे भी करते रहेगी, तो उनकी सेहत पर कोई इसका गलत असर तो हुआ नहीं है। अब तो आप मान गए ना, तो आप भी आपका ब्लड डोनेट जरूर कीजिएगा। और बाकी तो सुनते रहिए।

0: जून महीना जब शुरू होता है ना तो स्कूल रीओपनिंग होता है और स्कूल की हमारी भी बचपन की कुछ ना कुछ यादें तो होती है।
1: वो बातें 90s की बातें,
2: 90s की बातें वितार जी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
0: मुझे आज भी याद है यार, जब बचपन में हमें स्कूल जाना होता था ना तो बड़े बहाने करते थे हम, कुछ ना कुछ बहाना मार के सोचते थे कि यार आज किसी भी हालत में स्कूल से छुट्टी ले ही लेंगे, लेकिन मम्मी जो होती है ना वो ऐसा होने नहीं देती कतई, बिना किसी वजह से तो डांटती भी है। और स्कूल अगर ना जाने का बहाना बनाए तो उसे सबसे पहले समझ में आता है कि मेरा बच्चा नाटक कर रहा है, जबरदस्ती वो स्कूल को भेजती थी। और ये तो बचपन की एक प्यारी यादें होती है, तो मैंने सोचा चलो यार आज इसी पर बात करते हैं। मेरी तो स्कूल की बहुत सारी यादें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपकी ना तो स्कूल के पहले दिन की बचपन की कुछ प्यारी सी यादें होगी ना तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपके भी वो बचपन के दिन वापस से दोहराने का एक प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं। तो कॉल कीजिएगा 9359320080 इस नंबर पर, नंबर फिर से याद रखिए 9359320080 # मेरी स्कूल की यादें। जल्द से जल्द कॉल करें क्योंकि मैं आपको एक कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और याद रखिए इस रूट की सभी लाइनें मस्त है, तो बिंदास कॉल करें। और बाकी तो यार फुल ऑन एंटरटेनमेंट के साथ सुनते रहे आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें वितार जी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: से मुक्ति पुरुष और महिला अंतर रुग्ण सुविधा उपलब्ध आज भेट दिया।
1: उत्कर्ष क्लिनिक हरसुल टी पॉइंट एचपी पेट्रोल पंप शेजारी जलगांव रोड छत्रपति संभाजीनगर अंतर रुग्ण विभाग दिशा हॉस्पिटल समोपदेशन काउंसिलिंग सेंटर संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ छत्रपति संभाजीनगर कॉन्टैक्ट ऑन 8889 2688।
0: क्या आप इंग्लिश फ्रेंच जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक संस्कृत मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश एमए इंग्लिश एमए मराठी एमए हिंदी एमए उर्दू एमए संस्कृत पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश संस्कृत फ्रेंच जर्मन उर्दू जापानीज पर्शियन एंड ट्रांसलेशन
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: परफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

ग्रामीण गाव मोठं वर्तमान राजा बिगी बिगी बिगी बिगी डौलान डौलाने गाव मोठं वर्तमान गाव मोठं

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: परफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

तेरी मेरे पीछे पीछे भाग किस में दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: हर दिल की आवाज बने,
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
3: ये
1: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: प्रक्रिया।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन Open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC, Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology, Computer Science and Engineering, Cyber Security, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco Chhatrapati Sambhaji नगर।
3: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
4: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
5: ये है MGM 90.8 FM।
6: साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।